ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। इन अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात के औकात में अल्लाह की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते हैं, और यही लोग नेकुकार हैं। और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। जो लोग काफिर हैं उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके हरगिज काम ना आएंगे, और ये लोग अहले दोजख हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे।

सरकार कदा से

0: में बुधा हिन फौजी बायरन लाय खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाय फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में बजट ते वॾा इख़्तिलाफ़ ख़तम। पीपल्स पार्टी नून लीग खे बजट जे असूली तौर हिमायत करण जी ख़ातिरी कराए छॾी। इख़्तिलाफ़ी नुक़्तनि ते फ़ैसिलो ॿिन्ही पार्टियुनि जूं कामेटियूं कंदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे वफ़द सां गॾु सदर आसिफ़ ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात। शहबाज शरीफ़ तरक़ियाती बजट समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॿिन्ही अॻवाननि खे एतमाद में वरितो। ज़रियनि मौजूद मुलाक़ात दौरान आज़ाद कश्मीर सूरतहाल ते बि गौर कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी बी चूंडनि में पीपल्स पार्टी क़यादत खे मुबारकूं ॾींदे चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी असांजे भेट में सुठी मुहिम हलाई। सदर ज़रदारी वञण त आख़िर पुट कंहिंजो आहे।

ईरान ऐं इसराइल जे ॿिए ते हमला रोकण जो ऐलान ईरान ऐं इसराइल जे फ़ौज हमला रोकण जी तस्दीक करे छॾी। पासदारन इनकलाब चयो आहे त भारत ते हमलनि जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। इसराइल उहिदेदार मूजिबि सदर ट्रंप जी दरख़्वास्त ते ईरान ते हमला रोकिया आहिनि। लबनान में हिज़बुल्लाह ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। अमरीकी सदर ट्रंप ॿिन्ही मुल्कनि खां हमला रोकण जो मुतालबो कंदे चयो त ईरान सां मुआदे खे ख़राब न कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8559।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1556-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niyat. Product by Biocon Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन

0: क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आरआई 03073592120।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी स्टूडेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन थी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8851
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीबकरण जिस चेकबुक डेबिट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलबीबकरण प्लस अकाउंट भरोसा
2: भी। स्किन डल और बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवहाजी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवहाके रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
0: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
0: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
1: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंक

0: भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मैं ऑल इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: रابطे लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 03013992836।
3: आई मोहम्मद उमर गोरी 03151557024।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चवाहे ईरान से गारन में अग बराई थी है। इसराइली वजीर आजम के ईरान से हमलो करण का रोको हो। बिन ट्रंडियन में को मनसूबो सामू अची सके तो लगे तो ईरान मुआदे से सहयोग करण में दिलचस्पी रखे तो मुआदो थे ती अब हुरमत नाकाबंदी पूरी कुवत से जारी रही। गालियों की कामयाबी बाद तेल जो कीमतू तेजी से घटी व्यूंदियों।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तमाम से लोग जिन लोग या सालगिरह हैं उनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज़ जिन जिन गलियों और चौबारों शहरों और चराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरी परस्तारों या गड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगले जी आयानू सब बिस्मिल्लाह बोंजोर शाओ निहाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. और इस प्रोग्राम में ये जो पहला गाना है ना ये हम सुनेंगे एंजॉय करेंगे. एंजॉय करने के साथ साथ आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: प्रोग्राम सुन रहे हैं।
1: बहुत अच्छा चलता है आपकी आवाज़, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है, जिंदगी गुजार
0: चले जबरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ये गाना सुनाएंगे?
1: हाँ जरूर सुनाएंगे, निकट मास की आवाज।
0: ओके सुनाएं प्लीज।
1: सर सजेनी हिंदी आया कुरु करवा दादू, मटका थे सखर का थे दादू। सर सजेनी हिंदी आया कुरु करवा दादू, मटका थे मोरो सखर।
0: ओके ये वाला हम गाना आपको सुनाते हैं और मुझे बताएं और कुछ कहेंगे।
1: हाँ जरूर कुछ ये कहना चाहूंगा था, जिसमें सारे लोग सुनते होता है पानी का लीमी का इस्तेमाल करो, अभी गर्मी जितनी चलती है ना अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, और बच्चों का भी ख्याल करो, आपका भी ख्याल करो।
0: ओके जी थैंक यू, बहुत सारा ख्याल रखिए।

0: ओके जी, साथ साथ हम भाई का गाना प्ले करेंगे और गाने के साथ साथ कॉल्स ले लेंगे बहुत सारी. नेक्स्ट कॉलर ऑन द कॉल. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम सागर बात कर रहा हूँ.
0: सागर भाई, कैसे? ठीक ठाक.
1: खैरियत खैरियत, ठीक ठाक मैम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह.
0: कौन सा गाना सुनाएंगे आज आप हमें?
1: मैं भी गजल सुनाऊंगा मैम आज.
0: सुना
1: दो.
0: ओके.
1: कनक से कहू एक देर बाहर से कमी दुनिया के प्यार जलवे तुम्हारे
0: जी. थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखे सागर भाई अपना. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ये गाना सुनेंगे हम, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

0: पहुंचिए सक्कर FM 80।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: बड़ी शौक का बोल दूँ।
1: ओके फिर गाना सुना दे।
0: गानों बाजी सुना जाते तो वो बताएंगे सही।
1: हाँ जी प्ले होगा आपका गाना।
0: समझे वो गानों बुदायो। हाँ तो थोड़ा समझे वो गानों बुदायो सांगे।
1: ओके कौन सा गाना? कोई भी सुना दो। कोई भी गाना सुना दो।
0: हाँ गानों समझे वो कुछ बुदायो।
1: ओके सी अल्लाह हाफिज़ 03000314488। एक गाने की तरफ मूव करते हैं जी, और साथ साथ आप लोगों की बहुत सारी हम लाइव कॉल्स भी लेंगे। एंड हियर कम्स द सॉन्ग बाय नबील शौकत, सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

ओके जी, आज का टंग ट्विस्टर जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, एंड द टंग ट्विस्टर इज, साजिद ने सात सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई, साजिद ने सात सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई, ये कहना है. और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. सो अगला जो हमारा सेगमेंट होगा अगले घंटे में, दैट इज बोलो तो माने, जिसमें एक अदर टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखा रहे होंगे, बोल के दिखा रहे होंगे. सो उसमें फिर हम टंग ट्विस्टर खेलेंगे और आप कहेंगे टंग ट्विस्टर. सो इसी के साथ

के चलेंगे हम। और एक और गाना प्ले करेंगे और इस गाने के साथ जाएंगे हम न्यूज ब्रेक, फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

लबनानी हथियारबंद फौज कमांडर इन चीफ जनरल रोडलिफ हेकल जे जीएचक्यू आमद फील्ड मार्शल सदास मुनीर से मुलाकात। आईएसपीआर मूजिब जीएचक्यू पहुंचण से लबनानी कमांडर इन चीफ के पाकिस्तानी फौज की दस्ती गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो। मुलाकात दौरान गडल दिलचस्पी के मामलों इलाकई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताबन के ख्याल की डेवट कई वही। पाकिस्तान ए लबनान की हथियारबंद फौजन के विच में पेशेवरानी लागापा तरबियती ताबन वधाने ते इतफाक कयो वियो। फील्ड मार्शल सैद आसम मुनीर लबनान से डिघे अरसे खुशगवार लागापन की अहमियत से जोर दिनों और लबनानी हथियारबंद फौज से दिफाई ताबन के वधाने की पाकिस्तान के अजम जो वर्जाव किया।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि में अघ भराई थी आहे। इसराइली वज़ीर आज़म खे ईरान ते हमिलो करण खां रोकियो हो, ॿिन टिनि ॾींहनि में को मनसूबो साम्हूं अची सघे थो। लॻे थो ईरान मुआदे ते सहियूं करण में दिलचस्पी रखे थो। मुआदो थियण ताईं अबना हुरमज़ जी नाकाबंदी पूरी कुवत सां जारी रहंदी। ॻाल्हियुनि जी कामयाबी बाद तेल जूं क़ीमतूं तेज़ी सां घटिजी वेंदियूं।

गडियल कौमन में ईरान जी नुमाइंदे अमीर सईद ईरान में चयो आहे त जंगबंदी जे मसूदे में लबनान समेत सभी इलाका शामिल कया वेंदा। अमरीका ईरान विच में जंगबंदी जे आखिरी मसूदे ते बहस जारी आहे। अञा ताईं को बि मुआहिदो न थियो आहे पर कोशिशूं जारी आहिनि। पाकिस्तान वसीले पंहिंजो आपने हुरमज बेचो अमरीका जो अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर किरी तबाह। अमरीकी अखबार मूजिब वाक्य गुजरियल ॾींहुं पेश आयो। खबर न हेलीकॉप्टर ईरान किरायो आहे या फनी खराबी सबब किरियो आहे। अमरीकी फौज पारां हेलीकॉप्टर में सवार ॿिनि ॼणनि खे रेस्क्यू कयो वियो। अमरीकी अदालत परडे मुलाज़िमन बाबति सदर ट्रंप जे JH-1 वीज़ा पॉलिसी खे रद्द करे छॾियो। सदर ट्रंप H-1B वीज़ा दरख़्वास्तनि ते $1 जी फीस लागू कई हुई। अमरीकी फेडरल ज़िले जज लिव सोरकन वीज़ा पॉलिसी खे गैर क़ानूनी क़रार ॾींदे चयो त ट्रंप इंतज़ामिया कांग्रेस जी मंज़ूरी खां सवाइ मामले ते कार्रवाई करे

पंहिंजे अख़्तियार ओरांगिया। कैलिफोर्निया समेत 20 अमरीकी रियासतनि सदर ट्रंप जे H-1B पॉलिसी खे चैलेंज कयो हो। बख्शापुर बरसांगोट रसूल बख्श चाचड़ में हथियारबंदनि जे हमले में चाचड़ बर जे नौजवान सदरीन चाचड़ क़त्ल, वाके बाद जवाबदार फरार थी पिया।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3-8-5-6-9।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुख्य मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: हाउ की जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. हमारा सेगमेंट जिसका नाम है बोलो माने, बोलो तो माने में एक अलग टंग ट्विस्टर जो कि आप लोग बोल के दिखाएंगे. आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं टंग ट्विस्टर बोलने के लिए या इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 03000113488. इसके अलावा आप लोग मुझे सिंपली मैसेज भी कर सकते हैं जी. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और इसको सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है GFM88 के पेज पे आपको मिलती है पोस्ट पब्लिश की गई, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. और कॉल्स भी हम आप लोगों की लेना स्टार्ट करेंगे. सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर, हेलो हेलो ओके जी हेलो, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, हेलो ओके जी हेलो, कॉल ड्रॉप हो चुकी है. ओके 03000113488 नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो ओके जी आवाज क्यों नहीं आ रही है. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? कौन? तूबा.
1: जी हाउ आर यू?
0: तूबा कैसे, ठीक ठाक?
1: माशाल्लाह ठीक भी हूँ और नहीं भी.
0: ठीक भी है और नहीं भी है, चलें जितना नहीं है आप अल्लाह करे कि ठीक हो जाएं, ठीक है.
1: हाँ
0: अच्छा मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम सुन रही है?
1: हाँ पर आज टंग ट्विस्टर मिस हो गया.
0: टंग ट्विस्टर बोलेंगी?
1: नहीं था मिस हो कैसे करते
0: मैं बताऊं?
1: हाँ एक बार,
0: एक बार बताऊं?
1: जी
0: चले एक बार बताऊंगी. आपने कहना है कि साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
1: बहुत लंबा है.
0: बहुत लंबा है? नहीं नहीं लंबा नहीं है, इजी है. साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
1: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में लगाई.
0: सजाई
1: सजाई.
0: यस
1: साजिद ने 700 सुइयां संदूक में सजाई.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
1: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
0: यस
1: साजिद ने 700 सुइयां संभाल के संदूक में सजाई.
0: यस
1: साजिद ने 700 सुइयां संभाल के संदूक में डाल के सजाई. साजिद ने 700 सुइयां
0: ओके संभाल के. ओके काफी है काफी है काफी है. और कुछ कहेंगी? टंग ट्विस्टर मिस हो गया, कोई बात नहीं. थैंक यू तूबा. कुछ और या मैं आगे चलूं? ओके अल्लाह हाफिज़. थैंक यू 03000113488. नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: हाफिज लखनऊ.
0: हाफिज लखनऊ भाई कैसे, ठीक ठाक? जी मैं भी बहुत अच्छी. मुझे बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे?
2: जी बोलो बताइए.
0: बोले साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
2: साजिद
0: ओके स्टॉप, और कुछ कहेंगे?
2: हमारे दोस्त से
0: जल्दी से
2: हाफिज बदर
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।

0: Okay, Jean, next caller. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Mrs. Ali, kaise theek thaak?
1: Ji ji, alhamdulillah. Mere kya haal hai aapke?
0: Ji, main bahut achhi. Mujhe batayega ki program sun rahi hain?
1: Nahi gaana mam.
0: Nahi sun rahi. Tongue twister batao, bolengi?
1: Nahi gaana mam. Main aaj bahut sad hoon.
0: Aaj bahut sad hai. Kyun sad hai?
1: Haan, wo main request kar rahi hoon sabko. जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो मेरी मम्मी के लिए दुआ करें. मेरी मम्मी ठीक हो जाए. मेरी मम्मी की बहुत तबीयत नासाज हो गई है और मेरी मम्मी की बिल्कुल तबीयत खराब हो गई है. सब जो भी सुन रहे हैं ना, मुझे सब आ चुका है. मेरी मम्मी के लिए दुआ करें. पर पेन बनाती मेरी मम्मी के लिए दुआ करें. मेरी मम्मी ठीक हो जाए
0: इंशाल्लाह. इंशाल्लाह आपकी वालदा बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी. सब सुनने वाले जितने भी सुन रहे हैं जरूर दुआ करेंगे. मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं. आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और अल्लाह पे यकीन रखना है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी अम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी. ठीक है मिसेज. बिल्कुल जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अम्मी का भी ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और मिसेस अली की वालदा, जो कि उन्होंने बताया उनकी तबीयत खराब है, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं काइंडली काइंडली दुआ करें. और हमें नहीं पता होता कि हमारी दुआ कब किसके लिए कबूल हो जाए, किसके हक में कबूल हो जाए. तो बिल्कुल दुआएं करनी चाहिए और दुआओं के लिए कहना चाहिए. क्या पता किसी की दुआ किसके हक में कब कबूल हो जाए. ठीक है, तो ये दुआओं के रंग होते हैं. ओके, नेक्स्ट कॉलर. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप मुझे बताएं कौन और कहाँ से? ओके जी, गाजी खान रेंद.
2: जी जी.
0: टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगी?
2: हाँ जी
0: बोले.
2: साजिद ने साथ संभाल कर सजाई. साजिद ने साथ संभाल कर सजाई. साजिद ने साथ संदूक में सजाई. साजिद ने साथ संदूक में संभाल कर सजाई. साजिद ने साथ संभाल कर संदूक में सजाई.
0: ओके जी, वेरी वेल डन. और कुछ कहना है?
2: घर पे अल्लाह का शुक्र है,
0: खैरियत है. ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. इसी के साथ हम चलेंगे एक अदर सॉन्ग की तरफ और सॉन्ग मेरे पास मौजूद होगा बहुत ब्यूटीफुल. और ऐसे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपको पूरे प्रोग्राम में सुनाती ही रहूंगी. तो हम प्ले करने जा रहे हैं रोमांटिक नंबर इन द सिंधी वर्जन. Stay tuned.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

शौक से सुनते रहें, एंजॉय करते रहें. इसके अलावा गाने में मजा नहीं आ रहा. नेक्स्ट प्ले करें क्या? नेक्स्ट प्ले करते हैं एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: मगर वही
1: ओके जी ब्यूटीफुल सॉन्ग वापस आ चुके हैं जी शो के लास्ट ब्रेक के बाद और लास्ट हमारा जो सेगमेंट होता है जिसमें हम लास्ट एंड लकी कॉलर्स को एंटरटेन करते हैं 03000134888 लास्ट एंड लकी कॉलर चेक करेंगे कॉलर कहाँ से जी हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहे हैं
2: जीएम बात कर रहा हूँ
1: जीएम भाई मुझे बताएं आज की अच्छी बात
2: आज की अच्छी बात आपने जो ये दवा मांगी है मिसेज अली की मदर के लिए तो सबसे मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ मिसेज अली की मदर के लिए दुआ करें अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अदा करें और सेकंड ये कि मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है आपकी आवाज सुनाई देती है प्लीज आप अपना माइक दुरुस्त करें ये मेहरबानी होगी आपकी
1: माइक दुरुस्त करें ओके जी थैंक यू सो मच बहुत सारा ख्याल रखना ओके एक और लास्ट एंड लकी कॉलर हेलो
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम
1: वालेकुम अस्सलाम जी कॉलर कहाँ से
3: मैम सागर बात कर रहा हूँ
1: सागर भाई आज की अच्छी बात क्या है
3: तोबा है
1: क्या है
3: मैंने कहा तोबा है मैम आज की जो साल मिलाने के ऑफिसर में से हाथी को जो है रक्त घटना के बराबर है
1: कॉल नहीं लग रही दो बार तो लग गई आपकी दूसरी बार लगी है ना
3: दूसरी बार लगी तो पहली बार आपने सॉन्ग गजल नहीं सुनाई मैम मेरे
1: अच्छा हाँ गजल नहीं सुनाई देखे
3: बोल रहा हूँ हाथी को जन्म बच्चे के तरफ बैठ सिखाने में बराबर है
1: चले गजल आपको जरूर सुनाएंगे मुझे बताएं आज की अच्छी बात
3: आज की अच्छी बात क्या है सब समझते हैं अच्छी बात क्या किसको समझाई है
1: सब समझते हैं अच्छी बात किसी को नहीं समझानी सबको पता है अच्छी बात
3: अच्छी बुरे में सब समझते हैं
1: अच्छा बुरा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपना अच्छा बुरा सब लोग सब समझते हैं
3: जी जी
1: चले ये भी अच्छी बात है थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी एंड मैं प्ले करने जा रही हूँ एक और सॉन्ग

ओके, ब्यूटीफुल सॉन्ग. और सॉन्ग के साथ साथ आज का जो हमारा टंग ट्विस्टर वाला सेगमेंट रहा है, डैट इज बोलो तो माने. और बोलो तो माने में किसने आज टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा कह के दिखाया है, उसमें हमारे पास दो विनर्स हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाया है. और उनमें से हैं जी एक तूबा. तूबा ने अच्छा कहा है. इसके अलावा जी गाजी खान रिंद ने हमें बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाया. ये दोनों हैं आज के सेगमेंट के विनर. और इसी के साथ हम फाइनली लेंगे आपसे इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट-चैट होगी शाम को 7 से लेके 8 बजे तक. और कल इसी प्रोग्राम में सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुलजार है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क।
2: रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान सा डीह बिन में सुठो मुआदो थे पूरी उम्मीद वॉशिंगटन में साफिन से ालाइंदे सदर ट्रंप तो विच ओवर में अमन मुआदे वाली कोशिशों आखिरी मरेले में आन बिन कंट्रीन डीह में सुठो मुआदो थे तो ईरान के नाकबंदी बरकरार है तेहरान तेल विक्रो नो करे

ॻाल्हियूं जंग जो हिसो आहिनि। अमरीकी सदर जी ॻाल्हियुनि में संजीदगी नज़र आई त ॻाल्हियुनि ते को बि एतराज़ न हूंदो। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ॻाल्हियुनि में मज़हबती माज़ ऐं लबनान वारे मामले तां पोइ ते न हटंदो। अमरीका एतबार जोगो नाहे। लबनान ते अकबराई थी त ॻाल्हियूं अॻिते वधी सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ईरानवी चयो आहे त अमरीका सां मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ अमरीका सां पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। जंग बंदी जे मसूदे में लबनान समेत सभई इलाइक़ा शामिल कया वेंदा। अञा ताईं को बि मुआदो न थियो आहे पर कोशिशूं जारी आहिनि। आबनर हुरमज़ वेझो अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर किरी तबाह। ॿई पायलट महफ़ूज़ रहिया। सदर ट्रंप अमरीकी आपाची हेलीकॉप्टर किरी तबाह थियण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त हादसे सबबि कंहिं बि शख़्स खे को नुक़सान न आहे पहुतो। हेलीकॉप्टर ईरानी फ़ौज जी फायरिंग सबबि तबाह थियो या हादसे जो शिकार आहे जांच करियूं पिया। ऐं बख्शे प्रबर सां गोट रसूल बख चाचड़ में नौजवान सदरदीन चाचड़ कतल। वाके बाद जवाबदार फरार थी पिया। पनवा क्लब सां बि चाचड़ दर्जे विंदुनि में छेड़ो। 10 ॼणा ज़ख़्मी। गोट फलाणी में छेड़े दौरान 10 ॼणा ज़ख़्मी थिया। मोहम्मद बख चाचड़ दुर्द चवण आहे त घर ख़ाली करण जे मामले तां जवाबदारनि हमिलो कयो।

0: मुख़्तलिफ़ ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3883-8556-9।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए दंदड़ा सबनी खूबसूरत मासूम ही सोने समाज उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुलों दो के समान दो चाहतों की बारिश उलासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक ऐसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नी से जाकर जमी से आसमां तक जिंदगी से मौत तक चांद से दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो वीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, यानी कि आप लोगों की खूबसूरतियां आप लोगों को बताई जाती हैं इस प्रोग्राम में कि किस तरीके कार को फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन और खूबसूरत बनते जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आपकी खूबसूरती अब आप लोगों के हाथों में है। तो बिल्कुल जी बताएंगे बहुत ज्यादा वाली बातें जो कि आप लोगों को बताने के लिए ही होती है। इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हाँ जी जनाब आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ जरा आपने भी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो चलिए जी ब्यूटीफुल बनने के लिए रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ साथ मौजूद रहने के लिए। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो बताएंगे कि आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ साथ अपने हाल चाल भी बताते जाइए सो डियर लिसनर्स आपके हालत कैसे है आपकी हालत उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनल यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे में आपके साथ मौजूद रहूंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इसी मोहब्बतों के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं बिल्कुल जी पूरी 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए खूबसूरती ही खूबसूरती है। तो बताएंगे जी बहुत ज्यादा वाली बातें बताएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा अली बोस आपके होंठों पर 440 वाली स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 वाली स्माइल लाते और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही प्यारी सी नात के साथ, एक बहुत प्यारी सी नात हमारी लिस्ट में मौजूद है। तो हम सोचते हैं कि वाली जो नात है ना ये आप लोगों के समातों के नजर करते हैं और उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। सो प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।

0: ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल ही जहां जहां तक अवेलेबल हो चुके हैं या फिर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो मुझे बताएंगे कि कहां कहां पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए या फिर आप चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में भी मिलने चाहिए, तो बिल्कुल आप बताएंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताती हूं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या लेकर आई हूं। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो मुझे ये लगता है कि ये सवाल जो है ना वो मुझे आप लोगों से पूछना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि हम आजकल जो है ना वो मोबाइल के बगैर जो है हमारा जीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। थोड़ा सा क्या, मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है आजकल। हम तो ये समझ रहे हैं कि मोबाइल के बिना शायद जिंदगी जो है ना हमें अच्छी लगेगी भी या नहीं। तो मेरा ये आज आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे ये बताइए जरा कि आप लोगों से अगर आप लोगों का सेल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए, यानी कि नो मोबाइल एक हफ्ते के लिए, तो आप मुझे बताएं कि उस एक हफ्ते के अंदर आप क्या कुछ करने वाले हैं विदाउट सेल फोन। ओके, तो आज के प्रोग्राम का बिल्कुल ये जो है ना वो सवाल ही टॉपिक है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का जो फोन है ना मोबाइल है ना ये ले लिया जाए पूरे एक हफ्ते के लिए, तो उस एक हफ्ते में बिना फोन के आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ये आज आप मुझे बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके सुनने वाले लिसनर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है, आप आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जी, पोस्ट को ज्यादा वाली जो है ना वो लाइक और शेयरिंग दिया करें ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सके कि मार्केट में आप लोगों के लिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो जो लोग प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूज होते रहते ना कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, मार्केट जाते हैं तो जरा सी ये बात उन्हें समझ नहीं आती कि जो इतने सारे प्रोडक्ट उनको दिखाए जाते बताए जाते तो वो सारे प्रोडक्ट उनकी स्किन के हिसाब से नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों का जहन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए और आप अगर मार्केट जाएं तो आपने क्या परचेज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक करते जा रहे हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज फेस वॉश आप लोगों के लिए है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए है, और उसके अलावा जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजीली आप लोगों को मार्केट से मिलने वाले हैं, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे मुझे बताइए, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ये नंबर लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके में आके सिटी में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक हो गया, 03-15-799-0595 ये नंबर याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आज आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आप लोगों ने फर्ज कर लेना है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते को आप किस तरह जो है ना वो गुजारने वाले हैं बिना मोबाइल फोन के, तो फर्ज कर लें जरा अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप एक हफ्ता। ओके, तो आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए, और जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके उनमें हमारे साथ यहाँ पर आदिल हुसैन मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश शाहीन जी जी सफा खुश ताँ बताया की आयो, कहते हैं सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, बिल्कुल जी। और अब्दुल कपूर कैसर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और उसके अलावा अब्दुल गफूर कैसर आप कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। और हिदायतुल्लाह कहते हैं हमारे कहते हैं हमारे मोहल्ले में शादी हुई थी, अगले ही दिन बचा हुआ सालन खराब हो गया क्योंकि फ्रिज में रखना ही भूल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है सिदरा, आज ये सॉन्ग चला दी असांजे करे लाड़कानो समझो इंग्लैंड थी, लिंक भेजू, बिल्कुल जी आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा। और वफा मीर मुनवर अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। और मोलाई मुजाहिद बोजार में सुन रहे हैं ठूफ चूसल से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिडो जी, केड़ा हाल आहिन, उम्मीद है तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ दा। असा तव्हां खे शो में वेलकम था चऊं ऐं असां बि तव्हां खे शो में वेलकम था चऊं बहुत शुक्रिया ख़ुशामदीद मोहम्मद ज़मान भाई आ चुके हैं वेलकम मोहम्मद ज़मान भाई और मोहम्मद अली खोसू हमें सुन रहे हैं मटियारी से मोहम्मद अली खोसू भाई आपका भी वेलकम करते हैं साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम और उसके अलावा अदनान नूर हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते आरजे गोइंग वेरी वेल एनर्जेटिक स्टार्ट बहुत शुक्रिया अदनान नूर आप हमारे साथ मौजूद है और हिदायतुल्लाह कहते हैं अदीब तूने नोट किया है कि तुम्हारा फ्रिज चलता तो है लेकिन घर से बाहर नहीं चलता हाँ कुछ चीजें ऐसी होती जो चलती तो है लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाती तो टेंशन ना ले और किशोर भाई कहते हैं कि हमें तो आदत है इंतजार करने की तुम करवाती रहो हम करते रहेंगे सलाम आदि खुश आयो यस माँ ठीक ताम जायो अज भला आदि चाहिए तो वह खैर ताई और कहते ओ नो ये क्या पूछ लिया आज बिल्कुल जी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से ये वाला सवाल पूछ लूं अशोक कुमार हमें सुन रहे हैं अशोक कुमार भाई ही लो एस एन आरबाणी वालेकुम अस्सलाम कहते ओ माय फेवरेट आरजे आप कैसी हैं लिखते हैं वेलकम टू द शो White Age and the Skin Beauty Show आपको भी वेलकम करते हैं खुशामदीद और मौलाई मुजाहिद बोजार कहते सिडो जी आज एक सॉन्ग प्ले करेंगी पाकिस्तानी मूवी का ये दिल आपका हुआ सॉन्ग वो लड़की है या जादू सिडो जी लाहूती साजन चांडियो भी आपका शो सुन रहा है अच्छा यानी कि ठीक है जी गाना आपने अच्छा बोला है तो लाजमी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे और बहुत शुक्रिया आप दोनों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है प्रोग्राम में और इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए कि अगर आप लोगों से एक हफ्ते के लिए आपका फोन सेल फोन मोबाइल ले लिया जाए तो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले हैं क्या करेंगे बताएं मुझे जल्दी से और साथ ही अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595 डायल करते जाइए खूबसूरत होते जाइए यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए इंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ
1: FM 8

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, निखरा चेहरा वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले। ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: मोरू,
1: नौशहरो,
0: मीरपुर खास,
1: लाड़काना,
0: सक्खर,
1: गूंज रही है हर जगह पर
0: सिंध की आवाज़।
1: जीए FM 88 नेटवर्क।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सदराव के साथ मौजूद मेरे साथ जितनी भी खूबसूरत समाते हैं सबको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आज मैंने आप लोगों से सवाल ही पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि फर्ज कर लें अगर आप लोगों से एक हफ्ते के लिए आपका मोबाइल फोन ले लिया जाए तो एक हफ्ता वो आप किस तरह गुजारेंगे, ये जरा आज आप मुझे बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आप ज्वाइन करते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा है और साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। ठीक हो गया। अच्छा, पोस्ट को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें और इसलिए शेयरिंग का कहती हूँ ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जान सके और उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो अगर वो जाएं मार्केट तो उनके जहन में पता हो उनको कि भाई हमने क्या चीज परचेज करनी है, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी कि जब हम मार्केट जाते हैं ना और बहुत ज्यादा वाली चीजें देकर हमारी जो मतलब ऐसा ना हमारी सोच ये काम नहीं करती कि हम क्या लेने आए थे और हम क्या परचेज करके जा रहे हैं। तो अगर ऐसा सीन आपके साथ भी होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप मार्केट जाएं तो सिर्फ आपने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और परचेज करना है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे बताएं आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं। बाकी जो अभी तक सोच रहे हैं तो भाई इतना मत सोचा करें, जेको तव्हां चाहियो था ना तव्हांजी खूबसूरती तव्हांखे मिली वञे, तव्हांजो हुसन तव्हांखे वापसि मिली वञे, तव्हां जल्दी जल्दी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करणु स्टार्ट करे वठो। ठीकु आहे।

अच्छा, उनके अलावा हैं जी दर्दे दिल, कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं, अगर आज मुश्किल वक्त है तो याद रखो सूरज भी हर रात के बाद तुलू होता है, अपने ख्वाबों पर यकीन रखो क्योंकि नामुमकिन सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक कोई उसे मुमकिन ना बना दे। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी है दर्दे दिल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। हिदायतुल्लाह कहते हैं ना बाबा ओनली जियो। अच्छा, दिलीप कुमार मेंगवार हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप कुमार भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं और तमाम के सारे शो पसंद अच्छी पयो सो मोहब्बत हुआ प्यारे भावन जो। किशोर भाई कहते हैं माँ अच्छा वगा पाता हूँ तो घोट लगता हूँ, यह गाला ना जडे मर्द जो है अच्छो वगो पाइंदो आ वाके घोट लगन है, इन लाइ मर्द जो शान आ बाबा अच्छो सूट पाइंदा कर सोना लगता है, आई वरी जडे तुम व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइंदा पो तो बाबा छा गाल करी तुम्हारी, जे मू अ ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कोन कन पाया सो उनके

चवंदमि बाबा छा था सोचो एतिरो न सोचींदा कयो जेको करणो आहे सो करणो आहे वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करणो आहे ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ हर तरह जो प्रोडक्ट मौजूदु आहे यानी कि हाणे तव्हांजी का बि बहानेबाज़ी न हलंदी छो त हिते तव्हांखे हर हिकु प्रोडक्ट मिले थो जंहिंमें तव्हांजे लाइ नाइट क्रीम बि आहे तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम बि आहे साबुण बि आहे फेस वॉश बि आहे एक्नी ट्यूब बि आहे अञा ॿियो छा खपेव जेके जेके माण्हू आहिनि अलॻि अलॻि मसलनि सां फेस कनि पिया उन्हनि जे चेहरे ते अलॻि अलॻि मसला आहिनि जीअं तव्हांजे चेहरे ते दाणा आहिनि या फिर तव्हांखे का सुठी नाइट क्रीम नथी मिले तव्हांखे का फेयरनेस क्रीम नथी सुठी सूट करे त बाबा तव्हांजे लाइ वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर तरह जो प्रोडक्ट खणी आयो आहे सो वाइट एश ब्यूटी क्रीम जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं त वाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका एवोकाडो एलोवेरा ऐं मिल्क सां तयारु कई वई आहे हीअ टई चीज़ूं हुन जे अंदरि एड कयूं अथसि तॾहिं वाइट एश ब्यूटी क्रीम तयारु थी आहे ऐं वाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी स्किन खे फ्रेश बणाईंदी आहे फेयर बणाईंदी आहे क्लियर बणाईंदी आहे सोनो बणाईंदी आहे सो मर्द हज़रात हुजनि या ख़वातीन तव्हां ॿई इस्तेमाल करे सघो था उन खां अलावा जेके माण्हू दाणनि जी वजह सां परेशान आहे शदीद वारो परेशान आहे त तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तयारु कयो आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे हीउ बाबा ॾाढो ज़बरदस्त ट्यूब अथव उन्हनि माण्हुनि जे लाइ ख़ासि करे जेके पंहिंजे चेहरे जे दाणनि जी वजह सां परेशान आहे सो अगरि तव्हां बि एक्नी खे ख़तमु करणु चाहियो था त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे जनाब ऐं तव्हांजे एक्नी सां फाइट कंदो आहे तव्हांजे एक्नी खां अलावा तव्हांजा निशान आहिनि जेके फेस ते उहे ख़तमु थींदा आहिनि तव्हांजे चेहरे ते कोई कट जो निशान आहे कोई सड़न जो निशान आहे कोई केतिरो पुराणो निशान आहे जेके तव्हां रिमूव करणु चाहियो था त तव्हां बिल्कुलु डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे उन खां छुटकारो हासिल करे सघो था उन खां अलावा इस्तेमालु करण जा तरीक़ेकार बि ॿुधायां थी पर पहिरियां सभु प्रोडक्ट जे बारे में त ॿुधी वठो ऐं तव्हांजे लाइ वाइट एश ब्यूटी सोप बि मौजूदु आहे ऐं वाइट एश जो फेस वॉश बि मौजूदु आहे सोप जेका उहो एलोवेरा एवोकाडो ऐं मिल्क सां तयारु कयो वियो आहे बाक़ी जेको फेस वॉश आहे उनजे अंदरि वाइटमिन सी मौजूदु आहे ठीकु आहे इहो इन्हनि ॿिन्हिनि में डिफरेंस आहे उन खां अलावा अगरि तव्हां सोप लॻाईंदा आहियो त सोप लॻाईंदा अगरि तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा आहियो त तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा ईज़ी ऐं अगरि तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जे बारे में नथा ॼाणो त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त वाइट एश लवली क्रीम हिकु उहा वाहिद क्रीम आहे जेका फेयरनेस क्रीम सां गॾो गॾु हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड कई वई आहे यानी कि हिन में ॾिसो था तव्हांजे लाइ केॾो मतिलबु हिननि फ़ाइदो सोचियो आहे त जेके बि असांजा सुहिणा सुहिणा लिसनर असांखे ॿुधनि पिया जेके जेके सुहिणा माण्हू पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखणु चाहिनि था त हुनजे लाइ बिल्कुलु उन ई तरीक़े जो प्रोडक्ट हुजणु लाज़मी आहे सो अगरि तव्हां बि वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त बाबा वाइट एश लवली क्रीम जेका आहे हीअ हिकिड़ी फेयरनेस क्रीम आहे पर सिर्फ़ फेयरनेस क्रीम न आहे हिन जे अंदरि अहिड़ियूं चीज़ूं एड थियल आहिनि जीअं त रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयारु कई वई आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल एड आहिनि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल यानी कि तव्हांजी स्किन ते कोई बि वाइटमिन जी कमी आहे त उहा पूरी थी वेंदी जॾहिं तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु कंदा हिन जे अंदरि वाइटमिन डी आहे वाइटमिन ई आहे वाइटमिन सी आहे वाइटमिन B3 आहे उन खां अलावा सनस्क्रीन बि एड अथसि जीअं तव्हांखे अलॻि सां सनस्क्रीन लॻाइणो न पवे अहिड़ी गर्मी जे मौसम में तव्हांजी स्किन ते सनस्क्रीन बि लाज़मी ज़रूरी हूंदो आहे अगरि तव्हां सनस्क्रीन नथा वठो या फिर नथा इस्तेमालु कयो त तव्हांखे टेंशन वठण जी ज़रूरत नाहे तव्हां वाइट एश लवली क्रीम लॻाए सघो था वाइट एश लवली क्रीम तव्हांजी स्किन ते ग्लो बि ॾींदी ऐं तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट बि कंदी उन सिज जे असरात खां जेके सिज जा असरात तव्हांजे चेहरे खे नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि सम्झो था सो वाइट एश लवली क्रीम तव्हां ॾींहं जो लॻाए सघो था राति जो लॻाए सघो था नंढा ॿार हुजनि वॾियूं मायूं हुजनि मर्द हुजनि कुराड़ा आहियो तव्हां सभु हणी सघो था छो त वाइट एश लवली क्रीम जेका आहे न एतिरी ज़बरदस्त क्रीम आहे जेका तव्हांखे मज़ो ॾेई छॾींदी So white ash लवली क्रीम तव्हां लॻायो ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ाई चमकंदी वधंदी उन खां अलावा ॿियो छा उन खां अलावा सोप ऐं फेस वॉश जी अगरि ॻाल्हि कयूं त उहो बि ऑल स्किन टाइप जे लाइ तव्हां बिल्कुलु हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो ऐं बाक़ी हा लॻाइण जा तरीक़ेकार छा आहिनि त बिल्कुलु लॻाइण जा तरीक़ेकार इहे ई आहिनि त अगरि तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो था त वाइट एश जी ब्यूटी क्रीम तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु करे सघो था छो त हिकिड़ी नाइट क्रीम आहे राति जे टाइम तव्हां इस्तेमालु कयो उन खां अलावा फेस वॉश तव्हां पहिरियां लाज़मी कजो फेस वॉश करे उन खां पोइ तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम अप्लाई करे सघो था ऐं उन खां अलावा अगरि तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाइणु चाहियो था तव्हांजे चेहरे ते दाणा आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करण जे लाइ त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब राति जे टाइम इस्तेमालु कयो उन खां अलावा तव्हां फेस वॉश लाज़मी कंदा कयो कोई बि प्रोडक्ट तव्हां लॻायो था तव्हां वाइट एश लवली क्रीम हणो था या डॉक्टर पिंपल ट्यूब हणो था या वाइट एश ब्यूटी क्रीम हणो था इन्हनि खे इस्तेमालु करण खां पहिरियां तव्हांखे पंहिंजो मुंहुं लाज़मी धोइणो आहे सही आहे तव्हां पंहिंजो मुंहुं धो पंहिंजे फेस खे सफ़ा क्लीन कयो क्लियर कयो उन खां पोइ तव्हां प्रोडक्ट अप्लाई कयो पंहिंजी स्किन ते तॾहिं ई जेको प्रोडक्ट आहे उहो तव्हांखे सही तरीक़े सां रिज़ल्ट ॾींदो आहे सो प्रोडक्ट खे सही तरीक़े सां इस्तेमालु अगरि तव्हां कंदा त तव्हांखे बिल्कुलु सुठो रिज़ल्ट मिलंदो आहे सो सुठे रिज़ल्ट हासिलु करण लाइ तव्हांखे सही तरीक़े सां इस्तेमालु करणा पवंदा सो
बिल्कुल सुनाओ इस्तेमाल कंदा हलो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती खे वधाईंदा हलो ऐं बिल्कुलु तव्हां बि हसीन ऐं प्यारा थियणु चाहींदा हूंदा सो तव्हां वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करे सघो था ऐं तव्हांजे एरिया में तव्हांजे ॻोठ में तव्हांजी सिटी में नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 ओके जी डायल कीजिए हिकु नंबर और साथ साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करती जाइए और जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब भी देते जाइए तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताते जा रहे हैं कि अगर फर्ज कर लें आप लोगों से आपका मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो एक हफ्ता वो आप कैसे गुजारने वाले हैं क्या करेंगे उस एक हफ्ते में अगर आपका सेल फोन आपके साथ ना हो तो

वहाँ प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए. अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है आरजे सिद्रा. आपकी खातिर मेरी आपी और भाभी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सोप के साथ इस्तेमाल कर रही है और मैं खुद व्हाइट एश लवली क्रीम लगाता हूँ और मेरा भाई सिर्फ डी स्किन का फेस वॉश लगाता है. और जी, ये हमारे साथ मौजूद है इमरान अली बिरोही फ्रॉम लाड़काना. इमरान भाई, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. और उसके अलावा हैं जी, ये कहते हैं बाजी टॉपिक का जवाब है, मैं पूरा हफ्ता सो जाऊंगा. पूरा हफ्ता कैसे सोएंगे, इतनी नींद आती नहीं है. और इतनी नींद आती नहीं है. और इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया. फकीर मोहम्मद हमारे साथ है, पाक आर्मी पनो आकिल से कहते हैं सिस आपकी आवाज बहुत प्यारी है और आप टैलेंटेड भी बहुत है, माशाल्लाह खुश रहें. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया. मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर है, कहते अस्सलाम वालेकुम बाजी टॉप. शो सुना फिर बताएं आपको कैसा लगा. अच्छा, जो लोग शो में शामिल होते हैं फिर वो अगर साइलेंट होकर शो सुने तो फिर थोड़ी कैफियत अलग सी होती है कि उनको ये चीज ना मजा नहीं देती कि भाई हमें तो मैसेज करना चाहिए, मुझे ये लगता है. और ये कौसर कहती है कि जन्नत, अगर आपसे ले लिया जाए फोन तो आप क्या करेंगे. मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ. मैं वैसे ही फोन जो है ना वो कम यूज करती हूँ. अच्छा, साइमा मीर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम. माशाल्लाह मैं बेस्ट आरजे सिद्रो, आप कैसी हूँ, आपका शो मस्त है जैसे. ठीक है. और कहती टॉपिक भले ले जाओ, मैं तो चली जाऊंगी अपने गांव. हाँ भाई, गांव में वाकई लोग बड़ा एंजॉय करते हैं. एरम कहती दिलबर आपी आपकी कल से मेरी तबीयत वाकई थोड़ी सी अजीब हो गई है, थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, गला खराब हो गया है मेरा और मुझे जुकाम हो गया है, तो ये कल से है सूरत हाल. आप दुआ कीजिएगा जल्दी से ठीक हो जाओ. और ना खां अलावा जेको आते जेके मानू असा के फेसबुक ते बुधो पया बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो और तमा जी शेयरिंग मुखे थोड़ी कम नजर अचे पई, ई छू कंदा आयो. अच्छा, शेला गुल जो गानो हलायो थम, मैं शेला गुल जे गाने हलाने सा गड असा के लुबना नजर अच्छी वही. लुबना कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडो जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ. ओके जी, आप हमारे साथ साथ हैं और क्या कहती हैं, नाइस शो एंड नाइस सॉन्ग शेला गुल का. हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाजा था कि शेला का गाना सुनकर आप जरूर आएंगे.

हां जी वठी तो अचे वठी तो अचे सबर कर समंदर गांगरू हमारे साथ है समंदर भाई कहते हैं हाय आरजे एंजल सिड आप कैसी हैं नजीर अहमद गांगरू हमारे साथ हैं ओके जी वेलकम वेलकम और आदिल कहते हैं कि जेकडे मुझो मोबाइल एक हफ्ते लाए वठी वने कोई तमा आईने सा सेल्फी कडन दस पोए समझ में इंदी तो अपलोड कंदा सी कडे अपलोड कदो जदी आईने सा सेल्फी कडंदा तो अपलोड के थी आई तो हर 5 मिनट बाद खीसे में हाथ हणंदस मोबाइल न मिलंदो त पंजो कन चिकींदस अमर के चवंदस मुजो दिमाग हैंग थी वयो आ है वी स्टार्ट जो बटन काडा आ है किथे आ अच आई पाड़े जे बारन खा पुछंदस भाऊ वाईफाई जो पासवर्ड होए चवंदा चाचा असा वट भी नेट ना है हफ्तो पूरो थींदो त मोबाइल के इए भाकुर पाइंदस जी गुम थेल प्यारो वापस मिली वेंदो हुजे अच्छा ये तो बड़ी भाई आपने अच्छी अच्छी बातें शेयर कर दी अगर वाकई सेल फोन हमसे ले लिया जाए तो शायद कुछ लोगों की कैफियत ऐसी हो सकती है हाँ जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हसन कहते हैं टॉपिक भले डह दिया मोबाइल खसे छड़ने पर वाई कोने हाँ कुछ मानो इड़ा भी हुंदा है अच्छा वासु भाई कहते अदि सिडो गाल तई सिदी मां सिर्फ वाइट एश वारन जो साबुन वठंदुम ता साबुन वठो फेस वॉश वठो पर वठो तो सही ना हिकड़ी शे इस्तेमाल कना त तांके खबर पंदी त बाबा वाकई प्रोडक्ट में दम आहे सो तमा लाजमी वठो इस्तेमाल कयो उनके अलावा दर्द दिल कहती टॉपिक चंदा क्या करती मैं ये तो कभी सोचा ही नहीं तो आज सोच लेना आप सोच कर मुझे बताएंगे अगर एक हफ्ता आप लोगों से फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले क्या कुछ करेंगे जल्दी से बताएं प्रोग्राम कैसे बनते जाए यहां पर टाइम हो जाता है कि हम न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं आपसे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: कौमी असेंबली जो बजट इजलास सुभाणे शाम 5 वगे तलब, सेनेट इजलास बि सुभाणे शाम जो 4 वगे थींदो। सदर वज़ीर आज़म जे एडवाइस ते इजलास तलब कया। पार्लियामेंटी मामलनि वारे वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त नएमारी साल जी बजट 12 जून जुमे वारे ॾींहुं क़ौमी असेंबली में पेश कई वेंदी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2024-27 जी बजट पेश कंदो। साॻिए ॾींहं ते बजट सेनेट में पेश थींदी।

0: क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास टियों भेरो मुलतवी। क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो हाणे इजलास सुभाणे थींदो। इजलास में पीएसटीपी समेत बजट जे अहम मामलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। हुकूमत सूबाई हुकूमतनि खे इजलास जे वक़्त बाबति आगाह करे छॾियो। इजलास में चइनी सूबनि जा वॾा वज़ीर शिरकत कंदा। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान जो वॾो वज़ीर बि इजलास में शरीक थींदो। तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
5: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3-8-5-6-9।
6: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं जॻहि जा पावा ऐं पाइप ॾेढ 2-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
7: न अदा।
9: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
7: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
8: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
9: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
8: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
10: 03013992836।
11: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: 15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जिनके बारे में जानकर आप लोगों को समझ आ गई कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी है. और इससे रिलेटेड जरा हम बात करेंगे यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो इनके क्या फायदे और इनको आप किस तरीके का ना इस्तेमाल करने वाले ये मैं आप लोगों को बताऊंगी. इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को ना वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. ओके जी सो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें एक हफ्ते के लिए आप लोगों से आप लोगों का सेल फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप किस तरह से गुजारने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे. ठीक है ओके जी जल्दी से बताइए. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं मुझे बताते जाइए. फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं 8821 पर ज्वाइन करते जा रहे हैं. और रेहान अली हमें सुन रहे हैं कहते गुड शो थैंक यू वेरी मच. रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लाहौर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम खुश आमदीद कहते हैं आपको भी.

ओके जी, एम अंसारी कहते हैं यूप अवेलेबल ऑन एवरी शॉप इन नवाब शाह, मुझे फ्री में दिलवाएं ना। अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगी कि आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है। और कहते हैं मुझे भी गोरा चिट्टा होना है प्लीज। मूलाए पारत करायो वाइट एश आईडी इसकिन वारन के कसम थव मासी चपरान जो न मासी चपरान जो कसम न जो खैर तवां जी लाए जको न असा अवेलेबल कराए छडिया त आनी तवां के जको न फ्री में भी जाराइंदा से टेंशन न वठो बस तवां जको आ त चिट्टे थेन जे लाए थोड़ो मेहनत कंदा कयो ए तवां के या चीज खबर हो जन को रे मार्केट में केडा केडा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आ ए केडा केडा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जन सा गड उई तवां जी स्किन जे लाए जरूरी आ या द डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तवां जे एरिया में मिलन था त बिल्कुल तवां के जारींदा से तवां गिफ्टिंग वारो सिस्टम स्टार्ट कंदासीं पर थोड़ो टाइम गुजरण ॾियो।

0: अच्छा अशफा कहते हैं कि सिदरा लाहौर में कड़े दुकान था मिलंदा प्रोडक्ट लाहौर में तव मालूमात वठो नथा मिलंदा पो मुखे बुधायो किथे किथे अवेलेबल नाइन को सा अवेलेबल कराइंदा सी
1: काफी करे करे मानू चरिया थी व्याहि
0: अच्छा ऐसन कहते हैं पर तव्हां शो न कयो त पोइ असां खे मोबाइल जी ज़रूरत नाहे अच्छा माने अगर असां शो कयूं था तॾहिं तव्हां मोबाइल जेको आहे इस्तेमालु कयो पिया चलो इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे इहा बि असांजी कामयाबी अच्छा ये अशफा क्या कहते हैं अच्छा लें ठीक है और रिहाना खान बखर से हमारे साथ मौजूद है रिहाना आपको वेलकम करते हैं और अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है अनवर भाई तव्हां जो मोहब्बतूं प्रोग्राम ॿुधो पिया टॉपिक चवंदो ॿियो मसलो न आहे पर तव्हां जो प्रोग्राम एफ बी ते कीअं ॿुधंदसि हा वाकई इहा सोचण वारी
1: ॻाल्हि
0: ए एम अंसारी कहते हैं कि वेटिंग कंदे मां ब्लैक थी वेंदसि अलाह न कंदो तव्हां वाइट वाइट थी वेंदा ऐं तव्हां थोरो सबर कयो थोरो वेटिंग कयो सही
1: आहे
0: छो त कॾहिं कॾहिं माण्हुनि खे वेटिंग जो फ़ाइदो मिलंदो आहे सो वेटिंग करण बि सुठी ॻाल्हि आहे ऐं तव्हां जेको नंबर ते राबितो करे वठो ठीकु आहे अच्छा कुझु ॾींहं पहिरियां हिकिड़ी ॻाल्हि थी हुई उहा मां तव्हां सां शेयर कंदसि पर हिते ॾिठो वञे त टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ऐं इहा ॻाल्हि मूंखे वेठे वेठे यादि अची वई जॾहिं ए एम चयो त मूंखे फ्री में गिफ्ट ॾियारायो तॾहिं हिन ॻाल्हि ते जेको आहे न मूंखे इहा ॻाल्हि यादि अची वई मां तव्हांखे ॿुधायां थी थोरो सबर कयो पोस्ट खे तव्हां लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ऐं मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट वठण जी तव्हांखे जेको आहे न तव्हां सोचो था ऐं कहिड़ो प्रोडक्ट तव्हां वठी चुका आहियो ऐं इस्तेमालु बि कयो पिया छो त जेके माण्हू अञा सोचनि था न उन्हनि जे लाइ इहो आहे त बाबा तव्हां जल्दी वेठो देरि न कंदा कयो अगरि तव्हां बि देरि कंदा त पोइ तव्हां बि ब्लैक ब्लैक थी वेंदा सो मां इहो नथी चाहियां त तव्हां ब्लैक थी वञो तव्हां वाइट वाइट हुजो ऐं तव्हां सोणा सोणा हुजो ऐं तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि ॿिन्ही जो इस्तेमालु कयो उन खां अलावा जल्दी मोटी अचां थी तव्हां ॾिए तव्हां करे न वञो मां उहो वञी उहो अचां थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड Keep listening. White Age and E-Skin Beauty Show is sponsored by White Age Beauty Products and E-Skin Beauty Products. Lagate rahiye, khoobsurat hote rahiye.

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

असाद, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताएं जरा मुझे कि अगर एक हफ्ते के लिए आप लोगों का मोबाइल ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते में आप क्या करने वाले हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों से ले ही लेना चाहिए। भागे लोगों को अगर मोबाइल दे देते ना लोग, तो फिर वो वाकई जो है ना वो आतंक मचा देते हैं। तो ऐसे लोगों से मोबाइल ले लेना ही चाहिए तो बेहतर है। इसी के साथ साथ अगर आप जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके बारे में मैं पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहती हूँ, और वो इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और आसानी से मुराद ये कि अगर आप इस्तेमाल करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। ओके, सो जब हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो कि भाई खूबसूरत बनना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर आप भी हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है, और पाकिस्तान में देखा जाए तो 2-3 क्रीमें ऐसी हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और उसी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल होती है। डॉक्टर से बिल्कुल जनाब इसे मालूमात के साथ साथ तैयार किया गया है, इस तरह की कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है जो आप लोगों की स्किन के लिए नुकसान हो। तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इसी के साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपने डी स्किन फेस वॉश भी लाजमी ट्राई करके देखना है। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, तो लाजमी लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरतियों को हासिल करते जाइए। नहीं नहीं आपको नहीं बोला था, आप तो नहीं, आप तो समझदार हैं, वो बात जरा किसी और की थी।

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ हैं मकसूद मलह, आपको वेलकम करते हैं। साइमा मीर कहती हैं लाड़काना की हर चीज़ अच्छी होती है, जैसे वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, और लोग तो और भी क्या बातें प्यारे हैं जी। माशाल्लाह, अब मेरी सिद्रा को ही देख लें। हाँ जी, बस सिद्रा को ही देख लें। उसके अलावा नूरिस एंटोनियो हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। साइमा मीर कहती हैं सिड्डो की जुकाम गर्मी वाला, हाँ भाई गर्मी वाला जुकाम हो गया मुझे, ये वाकई खतरनाक होता है, सर्दी वाले जुकाम से भी ज्यादा। तो बस दुआ कीजिएगा ठीक हो जाऊं जल्दी से। और उसके अलावा अच्छा ये गाना लगाया, ये स्पेशली हम शोनी को डेडिकेट करेंगे। शोनी,

शोनी क्या कहती हैं? शोनी कहती हैं आपकी जान में भी आ गई आपके शो में। आप ही अभी लंच करके अपने में आई हूँ और मेरा आप शो सुन रही हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आपने क्या सोचा है, कब लगाएंगे?

इमरान भाई मुमताज मलाई का गाना चल गया ना एक तो वाला गाना आपका हम कल सुनेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। इरम कहती है यार जवाब है मैं मोबाइल से बेजार हूँ, अगर कोई एक महीने के लिए ले ले मुझसे मोबाइल तो मैं आपको MP3 में सुनूंगी और आपके पास SMS के लिए अरीबा से फोन लेकर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। क्या बात है, आपने तो पहले से सोच रखा है। चलें बहुत बढ़िया। अच्छा, अवलेश मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई जान, वेलकम करते हैं।

0: हैं आपको, और उसके साथ साथ हैं जी इरम, कहती हैं
1: वालिस।
0: अच्छा बहुत शुक्रिया प्यारी। अच्छा ये फौजी पठान खान कोसो हमें सुन रहे हैं भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा मीर कहती सिडो, ये वाला सॉन्ग बच्चे घर में खेलते खेलते गा रहे थे तो एक बच्चे ने एक लफ्ज का मतलब पूछा, मैंने मतलब तो बताया लेकिन कहा के बाद आपका मैसेज जो है वो मिसिंग पार्ट हो चुका है। साइमा कोशिश करें ये कहा के बाद में जो आपने कहा है वो जरा दोबारा भेजिए मुझे। हाँ भाई जैसी गर्मी चल रही है तो मोहब्बतें गई भाई, जुती जरूरी है, ऐसे नहीं घूमा जाएगा।

जी बिल्कुल, ये गाना ट्रेंडिंग चल रहा है. और नखा अलावा जेको आसो के रसा सगड़ा. अच्छा गाना खत्म हो चुका है, सो हम यहाँ पर दूसरा वाला गाना लगाते हैं. ये जी गाना होने वाला है बहुत ही ज्यादा प्यारा.

ना दर्द दिल कहती है कि चल क्या जवाब दे रही है कि मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, मैं तो अच्छा चले मेरा वक्त तो अच्छा गुजरेगा आपका शो सुनकर, कॉल भी वो मेरे मोबाइल से करती है, आपके मोबाइल से कहती है, लेकिन आपने कभी बात नहीं करी है, इतनी क्यों शर्मीली है आपने दब? अच्छा किशोर भाई कहते मानू अलाई के साइलेंट थी शो बुधन था खूबी तो जेडी आरजे जो ना मुमकिन ना मु वी अ मिनट अलाई के पाना के रोकियो मां भी सोचा अलाई काडी भाई वदो मुके लगे पे अजु भी ता सुमी प्यायो नडी वांगे

अच्छा साइमा, तो गाना कौन सा था वो भी बताए मुझे जरा। अच्छा शोनी कहती हैं जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगी तो वहां से लूंगी, क्योंकि मैं सारी चीजें वहां से लेती हूं, अगर वहां पर ना मिले तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहीं से परचेज करके जाइएगा। ठीक है, देखिए मुझे कितना आप लोगों का ख्याल है।

अच्छा ए एम अंसारी कहते हैं सिडो मेरा खर्चा आपने बढ़ा दिया, कोई मुझे कह रहा है कि शाम तक मिल जाए वाइट एश के प्रोडक्ट्स। सच्ची बोले ये तो अच्छी बात है ना, थोड़ा खर्चा भी कर लिया करे। और वासु भाई कहते अदी सिडो असांजा ही बकला के तमा सा गड प्यारा गुजरंदा है, आई मुजा भी यकीन करो। मोहम्मद अली खोसो कहते हैं एक हफ्ते के लिए मेरा कोई सेलफोन ले जाएगा, पूरा हफ्ता वो मुझे भी ले जाए अपने साथ। चले ये ठीक है। अच्छा आदिल तमा जो गाना सुभाणी बुधंदासीं ठीक है।

ढोल वरी वो मनीदा नहीं है जी आप हमारा शो सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं।

वाकई इतने सादा और बेवकूफ़ लोग हैं, हम वाकई इतने सादा और बेवकूफ़ लोग हैं कि ज़रा सी अपनाइए, थोड़ी सी तवज्जो और चंद मीठे अल्फाज मिले तो हम अपनी ज़ात के सारे पर्दे खुद ही हटा देते हैं, दिल की वो बातें भी कह देते हैं जो बरसों खामोशी में दफन रहनी चाहिए थी। हमें ये गलतफहमी बिल्कुल हो जाती है कि सामने वाला हमें समझ गया है। यही वो मकाम है जहाँ दिल सबसे ज्यादा लुटता है, क्योंकि हर मुस्कुराहट सच नहीं होती, हर अपनाइयत खालिस नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं कि हमें खुली किताब बनाकर हमारे लफ्जों से अपने फायदे की मतलब निकाल सके। बहुत से लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, वो खुद को आपका खैर ख्वाह जाहिर करते हैं, लेकिन हकीकत में उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई और नहीं होता।

ओके जनाब, सर प्रोग्राम वाइट एज एंड एज इन ब्यूटी शो का जो वक्त है वो खत्म होने को आ चुका है। साइमा मीर बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसे डाटा करी बच्चों को। और ये जी हजार खान भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। गुलाम रहीम बलोच हमें सुन रहे हैं, आपको शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच जी। ओके जी, और यहीं पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात आपकी और हमारी होने वाली है कल वाले प्रोग्राम में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है डेली बेसिस के ऊपर। और कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाह हैं, जिनके फीडबैक्स रह चुके हैं उनसे माजरत करते हैं, जिनके गाने रह चुके हैं आज के प्रोग्राम में उनसे जनाब यही कहूंगी कि कल आके आगे गाने लगा दूंगी। हाँ वाकई मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कहीं मैं गजनी तो नहीं हो गई। मैं वाकई बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ और प्रोग्राम में बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाली होती है लेकिन वो मैं भूल जाती हूँ। वाकई लगता है कि मैं अब गजनी होती जा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप जो है वो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें, ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा वाला। मोकलानी ना है बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वजीर आजम ने एडवाइस से इजलास तलब कराया। पार्लियामेंटी मामलन वाले वजीर तारिक फजल चौधरी चवा तो नई माली साल के बजट 12 जून से बजट पेश कर इम्कान। नाणे वाले वजीर मोहम्मद औरंगजेब माली साल 2026-27 के बजट पेश कह सागे ढीह से बजट सेनेट में भी पेश थी। कौमी इक्तदादी काउंसिल जो इजलास टियों भेरो मुलतवी। कौमी इक्तदादी काउंसिल जो हाने इजलास सुभाणे थींदो। इजलास में PSDP समेत बजट के अहम मामलों की मंजूरी डी वी। जरिए मौजूद वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के इजलास के वक्त बाबत आगाह कर छो। इजलास में चैनी सूबन जहा वा वजीर शिरकत कंदा। आजाद कश्मीर के वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान जो वो वजीर भी इजलास में शरीक थी। तरक्याती बजट की मंजूरी डी वी। नायब वजीर आजम इसाक डार छदर आसिफ जरदारी से मुलाकात जो इम्कान। सुबन का वफाक के फंड्स की मुंतकली गालू। सिंध हुकूमत फंड्स की दस्तियाबी बाबत सदर के आगाही दी छी। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे लाइ भी बजट रखने इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत हेठ बिजली विरहाइंदड़ कंपनी की रिचकारी बाबत इजलास। वजीर आजम की बिजली विरहाइंदड़ कंपनी की रिचकारी वो अमल तेज करण की हिदायत। इजलास के ब्रीफिंग दीदे बुधा तो पेरे मरेले में इस्लामाबाद गुजरावाला फैसलाबाद इलेक्ट्रिक की निशकारी कई वी। काबीना कमेटी निशकारी की मंजूरी भी दई चुकी है। शहबाज शरीफ चयो तो खसारे मिलंदड़ रियासती इदारे की निशकारी हुकूमत की पहली तरजीह है। लबनानी फौज के सरबराह जनरल रोडलिफ हेकल जी GHQ आमिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। गडियल दिलचस्पी वन मामलों खिते की तब्दील सूरत हाल दिफाई सहकार ए फौजी लागपन के खती डे गाल बोल। फील्ड मार्शल पारा लबनानी फौज से दिफाई सहकार के खती डे वे आजम जो वर्चाओ। लबनानी फौज के सरबराह पारा पाक फौज के पेशेवरान सलाहतन की सारा खिते में अमुन ए इस्तकामबंद कोशिशों से भेटा पेश कई। ISPR मूजिब GHQ पहुंचने लबनानी कमांड इन चीफ के पाकिस्तानी फौज दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप ईरान से डीह बिन में सुठो मुआदो थन उम्मीद। वॉशिंगटन में साफिन से गालाइंदे सदर डोनल्ड ट्रंप तो विच ओभर में अमन मुआदे वाली कोशिशों आखिरी मरेले में आन। बिन कंट्री डी में सुठो मुआदो थे तो ईरान की नाकाबंदी बरकरार है। तेहरान तेल वेकरो नो करे।

0: कार इब्राहिम अज़ीज़ी गार्डन में मज़ामती माज ए लबनान वे मामले तौते न हटन्द अमरीका एतबार जो को ना लबनान से अकबराई थी तो गाल अगत वही सन थ गडियल कौमन में ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी अमरीका से मुहिदे की हतमी शक्ल दियण लाय अमरीका से पाकिस्तान जरिए गाल जारी हैं जंगबंदी के मसूदे में लबनान समेत सभी इलाका शामिल क्या वा अना तक को भी मुहिदो नियो है पर कोशिशों जारी हैं। आबना हुरमज वेझो अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर किरी तबाह बे पायलट महफूज रहा सदर ट्रंप अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर किरी तबाह थियण की तस्दीक कदे है तो हादसे सबब कें भी शख्स के को नुकसान ना पौतो हेलीकॉप्टर ईरानी फौज की फायरिंग सबब तबाह थो या हादसे शिकार जांच जारी। खारजी फितने भारत आजाद कश्मीर के पाबंदी मंडल इलेक्शन कमेटी जो गठजोड़ बेनकाब अफगानिस्तान में मौजूद खारजी ए भारतीय गुझे इदारे राज सरगर्म खारजी शहजाद जो पाबंदी मंडल तंजीम के हिदायतू दियण वाली ऑडियो सामू अची वही खारजी शहजाद पारा भारत पारा लिखल बयान पढ़ी पाबंदी मंडल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हिदायतू दे रो है बाहरन मूजिब खारजी जो लुखंदड़ आवाज कर रो है कें हिदायतू भारत दई रो है हुकूमत पारा कराची के न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स लाइ सहूलत देस कायम करण जो फैसलो सीनियर वजीर सरदीना मेमून सिदारत हेठ ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास ट्रांसपोर्टर्स लाइ वन विंडो सहूलत कायम करण जो फैसलो शर्जील इना मेमून चो तो कदम जो मकसद 30 जून 2026 ताई कमर्शियल गाड़ियों के डिजिटल और ऑटोमेशन निजाम में शामिल करण है सिंध हुकूमत अवामी खिदमत और ट्रांसपोर्ट शोबे में मुकम्मल डिजिटाइजेशन के नजरिए से कम कर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3589-0300-3859

0: जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सुन

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569

है पछतावे से। आई विश के इनकी गवर्नमेंट इस मसले को जो है अपने कंट्रोल में करे। और जनाब मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, जी मीरपुर खास FM88 के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ऑन एयर है सब दोस्त हमारे। और मैंने आज आपसे सवाल पूछा है, खवातीन अपनी उम्र मर्द हजरात अपनी सैलरी क्यों छुपाते हैं, इसकी क्या वजूहत होती हैं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर ब्रेक। इस वक्त हम एक छोटे से तशहीरी वक्फे की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधिक राबते जे लाइ 0385 569 3 8 5 6 9।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 03201800003।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

अच्छा अक्सर कहती है माशाल्लाह बहुत खूब गुल, मुझे एक बात आपकी आज भी याद है, आपने कहा था 8 साल पहले। इतनी पुरानी बातें अक्सर आपकी याददाश्त में, मैं सदके जाऊं, आपकी याददाश्त कमाल की है। अब मुझे 8 दिन पहले की बातें भी भूल जाती हैं। अच्छा क्या कहा था मैंने, मैं बहुत कुछ कहती रही हूँ अक्सर। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, करना वो चले, आई विल ट्राई। पोइट्री सुनाते हैं हम आपको। कौन आपके बारे में क्या कहता है, किसने आपका गलत इमेज लोगों को दिखाया, किसने आप पर तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया, किसने आपके जज्बात की कदर की, किसने इनका मजाक उड़ाया, किसने आपको हंसाया, किसने आपको रुलाया, कब कब आप जाए नमाज पे सजदा रेज होते हुए टूट कर बिखरे, कब कब आपने अल्लाह की रजा के लिए अपनी दुआओं को कुर्बान किया, कब कब आप तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करके जारो कतार रोए, कब कब आपने झोली फैलाकर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की, कब कब आपने दिल में सरगोशियां की जब जबान से कुछ ना कह सके, कब कब आपने अल्लाह ताला से गुफ्तगू के लिए कुरान पाक खोला, और कब कब खौफ और तकलीफ से लरस कर आपने अपने रब को पुकारा। तो ये जितना भी पीरियड आपकी लाइफ में गुजरा है ना, ये सब अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह हमसे लाइन कैसे हो सकता है, अल्लाह जानता है उसने कब और कैसे आपकी मदद करनी, अल्लाह ताला जानता है जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उस तकलीफ से राहत का वसीला कैसे बनाना है, और अल्लाह ताला जानता है आपको कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह जानता है आपको कब और क्या देना, अल्लाह सब जानता है, उसे सारी खबर है। वो जो रब है वो सब है, तो सब कुछ उस पे छोड़ दिया करें। इतने लंबे अरसे से जब आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इतने सालों से आप मुझे याद करवा रहे हैं गुजरी हुई बातें, आपको मेरी बहुत सी बातें याद हैं, तो मैं आपसे जस्ट ये कहूंगी कि इतना लंबा पीरियड जो मेरी जिंदगी में गुजरा है, उसके बाद मेरी जात में एक मजबूत चेंज आया। मैं यही चेंज आप लोगों में देखना चाहती हूँ कि कोई भी मामला हो किसी भी किस्म का, आप उस मामले को रब पर छोड़ के कह दें, या अल्लाह ये मामला मुझसे जोर है, मैंने ये अपना मामला तेरे हवाले किया, मेरे साथ मामला रहमी फरमा। यकीन जानिए अल्लाह ताला इतना बेहतरीन फैसला करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि फिर आपकी जिंदगी में सुकून की आमद होती है। वो इसलिए होती है कि रब आपका जो अंधा इत्बाद होता है ना, उसे कभी भी नहीं तोड़ता है। तो रबे कायनात जो है वो बहुत बेहतर समझते हैं अपने बंदे के मामलात को, ठीक है। अल्फाज के झूठे बंधन में, आगाज के गहरे पर्दों में, अल्फाज के झूठे बंधन में, आगाज के गहरे पर्दों में हर शख्स मोहब्बत करता है, हालांकि असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं, एक बार नजर में आके वो फिर सारी उम्र रुलाते हैं, खुलूस और मोहब्बत मेहर वफा सब रस्मी रस्मी बातें हैं, हर शख्स खुदी की मस्ती में, हर शख्स खुदी की मस्ती में बस अपनी खातिर जीता है, बस अपनी खातिर जीता है। अगर आप समझ गए ये बात, तो आई नो वेरी वेल आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा पर्सन बाकी नहीं रहेगा जिससे आपके होंठों पे आंसुओं और आपके होंठों पे मुस्कुराहट और आपकी आंखों में आंसुओं का सबब बने। किसी को भी इतना इख्तियार आपने अपनी लाइफ में हरगिज नहीं देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यही था हमारा आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम में आखिर में जाते जाते यही कहूंगी कि कोशिश कीजिएगा अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें दूसरों की जिंदगी में आपका वजूद खुशी मुस्कुराहट और सुकून का बायस हो, किसी की आंखों में आंसुओं की वजह आपकी जात ना हो। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए, यानी शब 8 बजे तक, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस इवनिंग।

ॻाल्हियूं जंग जो हिसो आहिनि। अमरीकी सदर जी ॻाल्हियुनि में संजीदगी नज़र आई त ॻाल्हियुनि ते को बि एतराज़ न हूंदो। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ॻाल्हियुनि में मज़ामती महाज़ ऐं लबनान वारे मामले तां पोइते न हटंदो। अमरीका एतबार जोगो न आहे। लबनान ते अघ भराई थी त ॻाल्हियूं अॻिते वधी सघनि थियूं। गरियल क़ौमनि में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी चयो आहे त अमरीका सां मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ अमरीका सां पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। जंगबंदी जे मसवदे में लबनान समेत सभई इलाइक़ा शामिल कया वेंदा। अञा ताईं को बि मुआदो न थियो आहे, पर कोशिशूं जारी आहिनि।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बार दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Shadi ka event aur stage aada tayar. Kyun? Kyunki vendors ko chahiye fauri payment. Event planning ho ya koi aur business. Payment ruk jaye to kaam bhi ruk jata hai. Business karna aasan nahi, lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. Isliye mere paas hai Bank Alhabib ka Alhabib current account. जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-801
1: स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

नए माली साल जे तरक्याती बजट लाइ सूबन खां 1200 अरब रुपया वठण जी तजवीज़। पंजाब वफ़ाक खे तरक्याती फंड्स लाइ पैसा ॾियण जी ख़ातिरी कराए छॾी। सिंध हुकूमत बि सूबाई वसीलनि बाबति सदर ज़रदारी खे आगाही ॾेई छॾी। वफ़ाक खे सिंध मां फंड्स जी फरहमी बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर आसिफ ज़रदारी कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदर आसिफ ज़रदारी सां मामले ते अॼु मुलाक़ात थियण जो इम्कान। ज़रियनि मूजिबि इसहाक़ डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रुपियनि जे वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब मां वफ़ाक़ खे 620 अरब रुपया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़ शामिल। बजट में NFC तहत सूबनि खे 8746 अरब रुपया मिलण जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबनि खे 7581 अरब मिलंदा।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372-02424601000।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307 3592120।

0: बे औलाद आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो।
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो, वक़्त बि इजाज़त न पियो ॾिए। दोस्तनि खे ॿुधाईंदा हलूं त असांजे स्टूडियो में मौजूदु सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इस्पताल नवाब शाह, प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहिबु, जेको 30 साल तजुर्बो रखंदड़ आहिनि। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि, पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। 0301-9198-51 डॉक्टर साहिब जो नंबर आहे, तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, अव्हांखे कॾहिं बि मायूस न आहे थियणो। गुर्दे में पथरी आहे, पिते में पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, गले जा गुदो वधियल आहिनि, पायल्स आहिनि, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। संदनि जो सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु आहे, गोॾनि जो सूरु आहे, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो आहे, निछो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु आहे, नज़र जी कमज़ोरी आहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। शुगर आहे, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़ आहिनि, फालिज, पैरालाइज़, जंहिंखे मिसाल साईं चयो त मूंखे पाण खे पैरालाइज़ आहे, अलाह साईं तव्हांखे शिफ़ा ॾींदो, डॉक्टर साहिबु वटि हलिया अचो, इलाजु मौजूदु आहे। खंघि आहे, टीबी आहे, मादे जो सूरु आहे, मादे जी अल्सर, एच पाइली जंहिंजो पॉज़िटिव अचे थो, त्री जो वधणु आहे, जिगर जंहिंजी त्री वधी वञे थी, मादे जो जंहिंखे सूरु आहे, या इन खां जिगर जो बीमारियूं आहिनि, हेपाटाइटिस बी आहे, सी आहे, गुर्दनि जो इन्फेक्शन आहे, चहिरे जो रंग वांजो सावरो थी वियो आहे, चहिरे जी ख़ारिश आहे, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कदु नथो वधे, औरतुनि में वज़न नथो वधे, या जिन औरतुनि जो वज़न वधी वञे थो, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचर ऐं सूमर ते डॉक्टर साहिबु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। जॾहिं बि असीं इहो ॿुधाईंदासीं त हर जुमो, छंछर ऐं आचर, यानी हफ़्ते जा 3 ॾींहं चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री आहे, बिल्कुलु मुफ़्त आहे। यादि रखंदा, अव्हांखे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। काफ़ी दोस्त चवंदा आहिनि साईं तव्हां फ्री जी ॻाल्हि खे, भई कंपनी डॉक्टर साहिबु जेकी चेकअप फीस आहे उहा बर्दाश्त कंदी आहे, जेकी जर्मन जी फ्रेंचाइज़ आहे, उहे जर्मनी वारा डॉक्टर साहिब जी फीस अव्हांजे तरफ़ां डॉक्टर साहिब खे पेड कंदा आहिनि, जंहिंजो डॉक्टर साहिब जे लाइ फ्री रखी वई आहे। बाक़ी अव्हांखे दवा ज़रूरु वठणी पवंदी, उहा पंहिंजे पैसनि सां वठंदा, इहो अव्हांखे ज़रूरु असीं नोट कराईंदासीं। उन ते अॼोको प्रोग्राम बि जो वक़्तु बि पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते, जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो, असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, साथ सलामत ऐं सिंध सलामत।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: वडल तंजीम की हिदायतू लेने वाली ऑडियो सामू अची वही। खारजी शहजाद भारत पारा लिखल बयान पढ़ी पाबंदी वडल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हिदायतू दई रो है। माहिरन मूजिब खारजी जो डकंदड़ आवाज वाजे कर रो है त खेस हिदायतू भारत दई रो है। रावलाकोट समेत समूरे आजाद कश्मीर में हालतू कंट्रोल हेठा आन मानुन की जान ए माल की हिफाजत कई पी वे। ममलकती वजीर तलाल चौधरी है पाबंदी वड़ियल तंजीमू वाइकू थी रही है। एक आडियो भी सामू आई है कश्मीरियन जो हक है उ कानून साजी कन ही कश्मीरियन जो हक कें बे के डेण चाहन था। वफाकी हुकूमत आजाद कश्मीर के मामले ते का कसर ना छी। आजाद कश्मीर में फोतगियन बाबत तफसीली प्रेस रिलीज जारी कई वी। पीपल्स पार्टी जो गिलगित बल्तिस्तान में आजाद उम्मीदवार से गडजी हुकूमत ठाण ते गौर। पीपल्स पार्टी के नदीम अफसल चंद है त पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवार से गडजी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ठाण की कोशिश कंदी। बिलाल भुट्टो जरदारी जी भी कुछ डीह में गिलगित वजण का इम्कान। गिलगित की चूंडन में पीपल्स पार्टी 10 आजाद 7 नून लीग 6 एक सीट से MWM कामयाबी माणी है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मूजिब 5 तकन के कुछ पोलिंग स्टेशन से 15 जून से बीहर पोलिंग कराई वेंदी। नए वाली साल के तरक्याती बजट टाय सूबन का 1200 अरब रूपया वठण की तजवीज। पंजाब अफाक के तरक्याती फंड्स लाए पैसा डेण की खातरी कराए छी। सिंध हुकूमत भी सूबाई वसीलन बाबत सदर आसिफ अली जरदारी के आगाही डेई छी। वफाक के सिंध में फंड्स की फरहमी बाबत हतमी फैसलो सदर आसिफ अली जरदारी कंदो। नायब वजीर आजम इसाक डार की सदर आसिफ अली जरदारी से मामले से अज ही मुलाकात थे इम्कान। जरियन मूजिब इसाक डार की सदारत टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रूपयन की वाधू फंड्स लाए कोशिशू कर रही है। पंजाब में वफाक 620 अरब रूपया डेण की तजवीज है। सिंध में 310 अरब केपी में 180 अरब ए बलोचिस्तान में 85 अरब मरकज के डेण की तजवीज। बजट में NFC तहत सूबन के 846 अरब रूपया मिलने जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबन के 7581 अरब मिलंदा।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटरी कबीर रोड मेरा पर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-9196-850
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-1800-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुजे दुकान जी बे डरंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: सुबह

क़ौमी असेंबली जो बजट इजलास सुभाणे शाम 5 वॻे तलब, सेनेट जो इजलास बि सुभाणे शाम जो 4 वॻे। नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। साॻे ॾींहं ते बजट सेनेट में बि पेश थींदी।

नए माली साल जे तरक्याती बजट लाए सूबन का 1200 अरब रुपया वठण जी तजवीज। पंजाब वफाक तरक्याती फंड्स लाए पैसा देने जी खातरी कराए छदी। सिंध हुकूमत भी सूबाई वसीलन बाबत सदर आसिफ अली जरदारी के आगाही दई छदी। वफाक के सिंध मां फंड्स जी फरामी बाबत हतमी फैसलो सदर आसिफ अली जरदारी कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ क़ाज़ी आसिफ सदर आसिफ जरदारी सां मामले ते अॼु मुलाकात थियण जो इम्कान। ज़रियन मौजिब इसहाक डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रुपयनि जे वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब वफ़ाक़ खे 620 अरब रुपया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब, केपी मां 180 अरब ऐं बलूचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़। बजट में एनएफसी तहत सूबनि खे 8746 अरब रुपया मिलण जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबनि खे 7581 अरब मिलंदा। खारजी फितने भारत ऐं आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी बणियल इलेक्शन कमेटी जो गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी ऐं भारतीय गुझे इदारे राज सरगर्म खारिजी शहजाद जूं पाबंदी बणियल तंजीम खे हिदायतूं ॾियण वारी आडियो साम्हूं अची वई। खारिजी शहजाद भारत पारां लिखियल बयान पढ़ी पाबंदी बणियल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खे हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। माहिरनि मूजिबि खारिजी जो ॾकंदड़ आवाज़ वाज़े करे रहियो आहे त खेसि हिदायतूं भारत ॾेई रहियो आहे। रावला कोट समेत समूरी आज़ाद कश्मीर में हालतूं कंट्रोल हेठा आहिनि। माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त कई पई वञे। मुमलिक जी वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पाबंदी बणियल तंज़ीमूं वाइकियूं थी रहियूं आहिनि। हिकु आडियो बि साम्हूं आई आहे। कश्मीरियुनि जो हक़ आहे त उहे कानून साज़ी कनि। छा ई कश्मीरियुनि जो हक़ कंहिं ॿिए खे ॾियण चाहिनि था? वफ़ाक़ी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जे मामले ते का कसर नाहे छॾी। आज़ाद कश्मीर में फोतगियुनि बाबति तफ़सीली प्रेस रिलीज़ जारी कई वेंदी। पीपल्स पार्टी जो गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी हुकूमत ठाहिण ते गौर। पीपी अॻवान नदीम अफ़ज़ल चंद चयो आहे त पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ठाहिण जी कोशिश कंदी। फिलहाल भुट्टो जी बि कुझु ॾींहनि में गिलगित वञण जा इम्कान। गिलगित जी चूंडनि में पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद 7, नून लीग 6 ऐं 1 सीट ते MWM कामयाबी माणी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मूजिबि 5 तकनि जे कुझु पोलिंग स्टेशन ते 15 जून ते 20 पोलिंग कराई वेंदी।

0: बर्तानिया पाण लाइ ईंदड़ 10,000 पाकिस्तानियुनि उते पनाह वठी छॾी। घरू मामलनि बाबति क़ौमी असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी जे इजलास में इंकशाफ़। DGFIA उस्मान अनवर कमेटी खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त गैर कानूनी तौर परॾेही वेंदड़ पाकिस्तानी मुल्क जी बदनामी जो सबब बणजी रहिया आहिनि। यूरोपीय यूनियन ऐं ॿियनि मुल्कनि इहो मामिलो उथारियो आहे। बर्तानिया में स्टूडेंट वीज़ा ते वेंदड़ 10,000 खां वधीक पाकिस्तानियुनि बि वीज़ा जो ग़लति इस्तेमाल कंदे उते पनाह वठी छॾी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां ज़री शोबे जे स्टेक होल्डर्स जे वफ़द जी मुलाक़ात। वफ़द में हारी तंज़ीमनि जा अॻवान, डेरी तोड़ी लाइव स्टॉक बिज ठाहिण वारियुनि कंपनीज़, क़ौमी ऐं मल्टीनेशनल कंपनीज़ जा नुमाइंदा बि शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान जी मईशत बहाल करण में ज़री शोबो इनकलाबी तब्दीली आणण में भरपूर सलाहियत रखे थो। वज़ीर आज़म डेरी ऐं लाइव स्टॉक खे हथी ॾियण लाइ पेश कयल तजवीज़नि जी आजिया कई। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि बिजली विराईंदड़ कंपनीज़ जी निजकारी बाबति बि इजलास थियो। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त पहिरें मरहले में इस्लामाबाद, गुजरावाला ऐं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक जी निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी जी मंज़ूरी बि ॾेई चुकी आहे। शहबाज शरीफ चयो त खसारे में हलंदड़ रियासती इदारनि जी निजकारी हुकूमत जी पहिरीं तर्जी आहे। लेबनानी फौज जे सरबराह जनरल रोडोल्फ हेकल जी GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां मुलाकात। गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि, खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल, दिफ़ाई सहकार ऐं फौजी इलाक़नि खे वधीक हथी ॾियण ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल पारां लेबनानी फौज सां दिफ़ाई सहकार खे वधीक हथी ॾियण वारे अज़म जो वर्जाव। लेबनानी फौज जे सरबराह पारां पाक फौज जी पेशवराणियुनि सलाहियतनि जे सारा खिते में अमन इस्तेकाम वारियुनि कोशिशुनि ते भेटा पेश। ISPR मौजिब GHQ पहुचण ते लेबनानी कमांडर इन चीफ खे पाकिस्तानी फौज जे दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000।
3: उम्मीद के दिए जलते हैं।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3 85-569 0300-3888-5699।

बैठे सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-8051
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202024206010।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: राजस्थान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मूजिब पंज तक के कुछ पोलिंग स्टेशन से 15 जून से बीहर पोलिंग कराई वी।

0: क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास सुभाणे तलब। बजट 12 जून ते पेश थियण जो इम्कान। सदर वज़ीर आज़म जी एडवाइस ते क़ौमी असेंबली जो इजलास सुभाणे 5 वॻे ऐं सेनेट इजलास मंझंदि 4 वॻे तलब करे वरिता। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त नए माली साल जी बजट 12 जून ते बजट पेश करण जो इम्कान आहे। नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। साॻे ॾींहं ते बजट सेनेट में बि पेश थींदी।
1: नए माली साल जी तरक़ियाती बजट लाइ सूबनि खां 1200 अरब रुपया वठण जी तजवीज़। पंजाब वफ़ाक़ खे तरक़ियाती फंड्स लाइ पैसा ॾियण जी ख़ातिरी कराए छॾी। सिंध हुकूमत बि सूबाई वसीलनि बाबति सदर आसिफ ज़रदारी खे आगाही ॾिनी। वफ़ाक़ खे सिंध मां फंड्स जी फरहमी बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर कंदो। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जे सदर आसिफ ज़रदारी सां मामले ते अॼु मुलाकात थियण जो इम्कान। ज़रियनि मूजिब इसहाक़ डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रुपियनि जी वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब मां वफ़ाक़ खे 620 अरब रुपया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब रुपया, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़। बजट में NFC तहत सूबनि खे 8746 अरब रुपया मिलण जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबनि खे 7581 अरब मिलंदा।
0: खारजी फितने, भारत ऐं आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी बढ़ियल एक्शन कमेटी जो गठजोड़ बेनकाब। अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद खारजी ऐं भारतीय गुझे इदारे राह जे सरगरम खारजी शहज़ाद जूं पाबंदी बढ़ियल तंजीम खे हिदायतूं ॾियण वारी आडियो साम्हूं अची वई। खारजी शहज़ाद भारत पारां लिखियल बयान पढ़ी पाबंदी बढ़ियल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खे हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। ॿाहिरनि मूजिब खारजी जो ॾकंदड़ आवाज़ वाज़े करे रहियो आहे त खेसि हिदायतूं भारत ॾेई रहियो आहे।
1: रावलाकोट समेत समूरी आज़ाद कश्मीर में हालतूं कंट्रोल हेठि आहिनि। माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त कई पई वञे। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पाबंदी बणियल तंज़ीमूं वाइखू थी रहियूं आहिनि। हिकु आडियो बि साम्हूं आई आहे। कश्मीरियुनि जो हक़ आहे त उहे कानून साज़ी कनि। छा ही कश्मीरियुनि जो हक़ कंहिं ॿिए खे ॾियणु चाहिनि था? वफ़ाक़ी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जे मामले ते का कसर नाहे छॾी। आज़ाद कश्मीर में फौदगियुनि बाबति तफ़सीली प्रेस रिलीज़ जारी कई वेंदी।
0: बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान जा 14 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब बिसिमिया वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनतुल हिंदुस्तान जे 14 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। केतिरा दहशतगर्द ज़ख़्मी बि थिया। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जूं 4 गाॾियूं बारूदी मवाद ऐं हथियार तबाह कया विया।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ज़रई शोबे जे स्टेक होल्डर्स जे वफ़द जी मुलाक़ात। वफ़द में हारी तंज़ीमनि जा अॻवान, डेरी तोड़े लाइव स्टॉक, ॿिज ठाहिण वारियूं कंपनियूं, क़ौमी ऐं मल्टी नेशनल कंपनियुनि जा नुमाइंदा बि शामिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवण हो त पाकिस्तान जी मैशत बहाल करण में ज़रई शोबो इनकलाबी तब्दीली आणण में भरपूर सलाहियत रखे थो। वज़ीर आज़म डेरी ऐं लाइव स्टॉक खे हथी ॾियण लाइ पेश कयल तजवीज़ुनि जी आजियां कई। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि बिजली विरिहाईंदड़ कंपनीज़ जी निजकारी बाबति बि इजलास थियो। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त पहिरीं मरहले में इस्लामाबाद, गुजरांवाला ऐं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक जी निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी जी मंज़ूरी बि ॾेई चुकी आहे। वज़ीर आज़म जो चवण हो त खसारे में हलंदड़ रियासती इदारनि जी निजकारी हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे।
0: लेबनानी फ़ौज जे सरबराह जनरल रोडोल्फ हेकल जी GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम उन सां मुलाक़ात। गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि, खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल, दिफ़ाई सहकार ऐं फ़ौजी लाॻापनि खे वधीक हथी ॾियण ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल पारां लेबनानी फ़ौज सां दिफ़ाई सहकार खे वधीक हथी ॾियण वारे अज़म जो वर्जाव। लेबनानी फ़ौज जे सरबराह पारां पाक फ़ौज जी पेशावरारियुनि सलाहियतनि जी साराह खिते में अमन ऐं इस्तेकाम वारियुनि कोशिशनि ते वेठा पेश। ISPR मूजिब GHQ लेबनानी कमांडर इन चीफ खे पाकिस्तानी फ़ौज जे दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डी बिन में सुठो मुआदो थे पुरोमेन। वॉशिंगटन में सहाफिन से गालाइंदे सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो तो विच ओभर में अमन मुआदे वारी कोशिशों आखिरी मरहले में दाखिल थी वही हैं। बिन का टिन डी में सुठो मुआदो थी सके तो। ईरान की नाकाबंदी बरकरार है, तेहरान तेल विक्रो न थो कर सके।
0: गालियों जंग जो हिस्सो आए। अमरीकी सदर की गालियों में संजीदगी नजर आई तो गालियों से को भी एतराज न हों। ईरान के कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी है तो गालियों में मजामती मास ए लबनान बारे मामले तक पोते न हटन। ए अमरीका एतबार जोगो ना है, लबनान से घबराई थी तो गालियों अगत थियं। गडियल कौमन में ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी है तो अमरीका से वायदे के हतमी शक्ल दियण लाए अमरीका से पाकिस्तान जरिए गालियों जारी हैं। जंगबंदी के मसवदे में लबनान समेत सभी इलाका शामिल किया वेंदा। अं तई को भी मुआदो न थो है पर कोशिशों जारी हैं।
1: बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर हेज हाइंस जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा जी जीएचक्यू अमन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। आईएसपीआर मूजिब मुलाकात में बितरफी दिफाई सहकार इलाकई सिक्योरिटी सूरत हाल एस्करी राबतन के हथी डण लाए तफसीली गाल बोल थी। इन अग जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जहीर अमन बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3583-569।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03195570724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर राबते 0300-3385-569 0300-3385-69
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार, ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंधी रवाजन जी बैठक, मिजान जी बैठक, प्रीमियम चूरो चाहे
2: सर्विस टायर्स,

नए माली साल की तरक्याती बजट लाए सूबन का 1200 अरब रुपया वठण की तजवीज पंजाब वफाक के तरक्याती फंड्स लाए पैसा देने की खातरी कराए छी सिंध हुकूमत भी सूबाई वसीलन बाबत सदर आसिफ अली सरदारी के आगाही दई छी वफाक के सिंध मां फंड्स की फराहमी बाबत हतमी फैसलो सदर आसिफ अली सरदारी कंदो नायब वजीर आजम इशाक डार की सदर आसिफ अली सरदारी से मामले से अज ही मुलाकात थियण जो इम्कान जरिए मुजिब इशाक डार की सदारत हेठ टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रुपयन के वाधू फंड्स लाए कोशिशों कर रही है पंजाब मां वफाक के 620 अरब रुपया देने की तजवीज है सिंध मां 310 अरब केपी मां 180 अरब बलोचिस्तान मां 85 अरब मरकज के देने की तजवीज बजट में एनएफसी तहत सूबन के 8746 अरब रुपया मिलने जो इम्कान हो नए माली साल में सूबन के 7581 अरब मिलंदा। कौमी असेंबली ए सेनेट जा इजलास सुभाणे तलब बजट 12 जून ते पेश थियण जो इम्कान सदर वजीर आजम जे एडवाइस ते कौमी असेंबली जो इजलास सुभाणे 5 वगे ए सेनेट इजलास मंझंदि 4 वगे तलब करे वरता वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी चयो आहे त नए माली साल जी बजट 12 जून ते पेश करण जो इम्कान आहे नाड़े वारो वजीर मोहम्मद औरंगजेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो सागे ॾींहं ते बजट सेनेट में भी पेश थींदी। पीपल्स पार्टी पारा गिलगित बल्तिस्तान में नवाज लीग बदरा आजाद उम्मीदवार से गड़ी हुकूमत ठाण की तैयारी पीपी अगवान नदीम अफसर चंद आजाद उम्मीदवार से गड़ी गिलगित में हुकूमत ठाण की कोशिश कंदी बिलावल भुट्टो जा भी कुछ डीह में गिलगित वजन का इम्कान गिलगित की चूंडन में पीपल्स पार्टी 10 आजाद 7 नून लीग 6 सीट से MWM कामयाबी माणी है गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुजिब 5 तक के कुछ पोलिंग स्टेशन से 15 जून से बीहर पोलिंग कराई वेंदी। खारजी फितने भारत ए आजाद कश्मीर की पाबंदी बढ़ियल एक्शन कमेटी जो गठजोड़ पे रकाब अफगानिस्तान में मौजूद खारजी ए भारतीय गुजे इदारे राज की सरगर्म खारजी शहजाद जो पाबंदी बढ़ियल तंजीम के हिदायतू देने वाली ऑडियो सामू अची वही खारजी शहजाद भारत पारा लिखल बयान पढ़े पाबंदी बढ़ियल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हिदायतू दई रो है माहिरन मूजिब खारजी जो डकंदड़ आवाज वाजह कर रो है खेस हिदायतू भारत दई रो है।

लावला कोट समेत समूरी आजाद कश्मीर में हालतूं कंट्रोल हेठा आहिनि। माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त कई पई वञे। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पाबंदी बढ़ियल तंज़ीमूं वाइकियूं थी रहियूं आहिनि। हिकु आडियो बि साम्हूं आई आहे, कश्मीरनि जो हक़ आहे त उहे कानून साज़ी कनि। छा ही कश्मीरनि जो हक़ कंहिं ॿिए खे ॾियण चाहिनि था? वफ़ाक़ी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जे मामले ते का कसर नाहे छॾी। आज़ाद कश्मीर में फौतगियुनि बाबति तफ़सीली प्रेस रिलीज जारी कई वेंदी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान जा 14 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब बेसिमिया वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनतुल हिंदुस्तान जे 14 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। केतिरा दहशतगर्द ज़ख़्मी बि थिया। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जूं 4 गाॾियूं, बारूदी मवाद ऐं हथियार तबाह कया विया।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर से वफद जी मुलाकात। वफद में हाली तंजीमन जागवान डेयरी तोड़ी लाइव स्टॉक बिज ठाण वारियन कंपनीज कौमी ए मल्टीनेशनल कंपनीज जहां नुमाइंदा भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चाहे तो पाकिस्तान की मईशत बहाल करण में ज़रई शोबो इनकलाबी तब्दीली आण में भरपूर सलाहियत रखे तो। वज़ीर-ए-आज़म डेयरी ए लाइव स्टॉक के हथी डेण लाइ पेश कल तजवीजन की आजियां कई। वज़ीर आज़म की सदारत हेठ बिजली विरहाइंदड़ कंपनीज की निजकारी बाबत भी इजलास थो। इजलास के ब्रीफिंग डींदे बुधाया वो तो पहरे मरहले में इस्लामाबाद गुजरावाला ए फैसलाबाद इलेक्ट्रिक की निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी की मंजूरी भी दई चुकी है। शहबाज शरीफ चयो तो खसारे में रहंदड़ रियासती इदारन की निजकारी हुकूमत की पहरी तरजीह है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।